क्यों भाई, क्या वजह है? जैसे कि अल्लाह तआला हुक्म दे, तबीर भी वैसी हुई। अल्लाह ताला का हुक्म बहुत बड़ा है। अल्लाह के नबी ने हुक्म की तामील की, लेकिन अदब देखे, अल्लाह ताला अब तो ही कबूल फरमा। हमारी क्या हैसियत है अंबिया के सामने? कोई हैसियत भी नहीं है। अल्लाह का हुक्म तो है, नमाज पढ़ो, अकीमुस्सलात, हमने पढ़ी है, लेकिन मोमिन के ईमान के तकाजा है, फिर भी दिल में यह डर रहता है, उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारे इस इबादत को कबूल फरमा। यह मोमिन के ईमान की निशानी है। दूर सजदे दे के सीना तान के नहीं चलते, मेरे जैसा कोई नहीं है, हरगिज नहीं, यह मोमिन नहीं है। मोमिन वो है जो इबादत करने के बाद सर झुका देते हैं और अल्लाह ताला से कबूलियत की दुआ करते हैं। सलफ सालहीन रमजान से 6 महीने पहले क्या करते? दुआ करते अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में इस रमजान को लिख दे, कि वो इस रमजान को पा ले। और अगले 6 महीने क्या करते? रमजान के बाद अल्लाह ताला दुआ करते कि अल्लाह ताला उनसे ये इबादत कबूल फरमाए जो उन्होंने रमजान में की है। हमारा क्या हाल है? यानी उनके पूरा साल रमजान ही की सोच में गुजरता और बहुत कुछ करते, लेकिन रमजान उनके दिल में हमेशा रहता है, क्योंकि रमजान जन्नत का महीना है। रमजान हमारी जिंदगी में आए और चला जाए और हम जन्नत से दूर रहें, इससे बढ़कर क्या हलाकत है? फिर दूसरे स्टेप में अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लम फरमाते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम की दुआ करते हैं, जिसके सामने आप सल्लम को जिक्र हो और वो दुरूद ना पढ़े, वो शख्स भी हलाक हो जाए, उस शख्स की नाक भी खाक आलूदा हो जाए। अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लम फरमाते हैं आमीन। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लम के हुकूक हम पिछले दर्स में जान चुके हैं। दरूद उन हकूक में से एक हक है और सबसे बेहतरीन है दरूद इब्राहिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आल इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आल इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। मुश्किल है ज्यादा, ये सबसे अजीम और सबसे बेहतरीन दुरूद है। क्यों अजीम है, सबसे बेहतरीन क्यों है? क्योंकि हम नमाज में तशहुद के बाद तशहुद में तहियात के बाद यही दुरूद पढ़ते हैं। और दूसरी वजह कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लम ने सहाबा कराम को इसी दुरूद की तालीम दी है। जब उन्होंने सवाल किया है कि सलाम तो हमने जान लिया, अब दुरूद कैसे भेजे, तो क्या अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लम अपने प्यारे सहाबा को खैर से महरूम करते, या कोई आम दुरूद बता देते, या जो सबसे अफजल है वही बताते? हमारा ईमान है कि जो सबसे अफजल था आप सल्लम बता दिया। अब जो बाकी बाद में दरूद आए हैं, दरूद ताज है, दरूद लख है, दरूद फातह है, दरूद पता नहीं कौन सा है, माही भी है, दूसरे भी हैं, ये दरूद कहां से आए हैं? अगर इन जैसे कि जिन लोगों ने इन दरूद को ईजाद किया है, वो कहते कि आप सल्लम ख्वाब में आए, और एक खालिद शख्स कहता है आप सल्लम बेदारी की हालत में आए, ख्वाब उनके ख्वाब में आता, तो मैं तो बड़ी हस्ती हूं और ये दरूद अता करके गए हैं और खुद भी नहीं सवाल किया। आप सल्लम खुद आते हैं, वो सवाल भी नहीं करते और ये दुरूद भी देके जाते हैं, ना इंसाफी नहीं? जिन्होंने सवाल किया उनको तो आम दुरूद दे दिया अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लम ने, और जो थे भी इस उम्मत के सबसे अजीम लोग, सबसे अफजल लोग, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अज्मईन, सवाल भी करते हैं लेकिन आप सल्लम को आम जवाब दे देते हैं।